0: प्रॉब्लम ये टेक टेक प्रॉब्लम मैं बड़ो मैंने भाई टे आमी मैंने भाई अभी यूं सोच के मैं क्या बोले टे मैं वो ट्विटी है क्वाकी मोमेंट तो मैं तो ला पुट्टा के लोग ट्रांकिलो मिगेलिटो पर अमोर दे दियो हरमानो अंदो ना मेंटालिटो साइकोलॉग देमो टांटो इंसिस्टिमो के फुरन थ्री मेसेस इंटेंसिवोस दे मेंटालिस्टा एंड साइकोलॉग अल पुंटो के उन डिया लो एनकुएंट्रो पर ला कैले डिगो कोमो अंडा मिगेलिटो. Y me dice, el lorito subió a la palmera, cortó una flor con su pico, bajó, se la entregó a la lorita y juntos se fueron a recorrer la vida. Te curaste, Miguelito, sí, pero con este vertito que mina me va la bola.
1: Sos parte de esta historia. Sos el protagonista de cada uno de nuestros programas. Aquí está tu lugar. Noche y Día.